0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: रात महाते पांडव वसन कुमा वसन कालिका आउ घोर छे गरुण र दाना बहारु नागमा रावण नासिका चंचल भाई घुमा।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

चंदीकोलोला के भाई कोला या मन धोने के ले ओ चारी लाई कड़को तीम लाई रात माटा था माई कड़को कमेरो आपको जानू डाटे मरी जानू था माई कड़को कमेरो

के गनो लारी भी सबका सगारी हर मीना बाजा दम देरा पटुकी फूको जीवन मेरो सुका माया रे दालाई समझेरा भन न भन बाला मेरो पा

0: आशर्मा रूपनी बालाई भूला छपने लाई मगा चरेबा पहलो दाई करकली गाबा नराई बस बाबा लाई मगा चरेबा पहलो दाई अहिले को वर्षा लाई मारी ना भाने
1: आज राम मैले गीतै भन्न आए।

मेरे पिहारा ले नाता समझे पानी नाता समझे पानी मई समझला दिन को दिन छत पानी तला जे जे परला परला जे जे परला परला मई समझला दिन को दिन एक मुठी परल कत बड़ा

0: आशर्मा रूपनी बालाई पुला छोपने लाई मरा चलेबा पहलो दाई परकोले गाबा नराई बसा बाबा लाई मरा चलेबा पहलो दाई अहिले को बसा लाई मरी ना भने
1: आज रा मैले गीतै भन्न आए।

एक मानो पिनी की रे की रे जाता बाटे निकागाटे रा अमीलो दाई लाई कठाई बारी लाई लाई बाटे निकागाटे रा चुरोड को खेली चारे जाना मिली बानाऊ रे ताई काटे रा के वन्नो हुन्चा समझे यो मने रुन्चा बानाऊ रे हाता को चूरा भाई जूरा मूरा जाऊला रे आसन लाऊला रे भाई नरी सवराना मैले मानी काना जाऊला रे आसन लाऊला रे भाई कठा को भरेंग इंचूला रे तारेंग माऊ मारे को बाचोरे दाम परो हजार चारी कोटी को बादर माऊ महारे को बाचोरे जाई चारी ना कोट को तिमला रातो माटो था माईरे खड़ को डोबा हाटो दांटे को होरा सोदा होरा पोरा था माईरे खड़ को डोबा हाटो आईले को बसा ममारे को भाये को ताईरे इनित्यो यो बाटो करकाला को पानी ढाके पोखी जानी को ताईरे इनित्यो यो बाटो हताईरा मेरो यो पत्रा काई गाला हरी मीना बाजा दम दे के गर्नु लरी बिर्साउ कस गरी हर मिना बाजा दम देर पटुकी फुको जीव मेरो सुख माया रे दाललाई सम्झेर भन न भन बाला मेरो पा

गटालायोर पिंडालु लाई गायरो पन केरा लाई गोबारा अब खाने कांचा यो बने कसा बन के लाई गोबारा बैराकी चली जाता गए पानी छाइना खोजी खबारा

गाडेरा पशुपति गुज्जेश्वरी दक्षिण काली समझेरा पशुपति गुज्जे काली दक्षिण काली समझेरा।

0: राई हो मर चुमर लाई टर्दैन काल के गरी मलाई सकभर बाचे उपाय गरौला उपाय चाहिँ नभए अब चाहिँ मरौला हस्त धन्यवाद
1: श्री पूर्वक राजे पालन ता गर्दै हरिचन्द्रजी।